माना जी रे माना ने चाबो दिया भी माना जा जी रे आवो रुवारो कंबू नोए आवो वनुवारो मानोए अल लंबर ने कई जीरो सुधी अल्लाह बुली